मंजरी कान का आने के रंगा होंगी बात थी एने ओके ने मिनी कुया लुई ओ गुस्त को मतापंग निया ए बाकों मंगा नाकाई ना तुम यंग उई अब गले ना को पेदें बसागदान लंग सी कुया लुई